कर जा। असी पकिया सम पकिया पापकी बोली जमानो बंटा लून लगे के बाय बदाती दुनिया लाम सिबी जंके न बोला न दरकं कमिला